रहमान की आवाज में बहुत ही अच्छा गाना भी अपने स्टूडियो में से सुना। अगर आप अपना कोई मनपसंद गाना सुनना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जॉइन द कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन 0488 877।

और भी अच्छे अच्छे गाने 0.7 द पल्स यू आर लिसनिंग टू मी आरजे ध्रुव और भी कोई मैसेज जो अपने हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन 0488 877 947